0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: Very good. Okay, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਸ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਾਸ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
4: ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
5: ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਜੀ।
3: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸਰ। ਐਂਡ ਸਰਾਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ?
5: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 50,000 से 1,70,000 की फंडिंग है। मिस ना करें, कहीं भी इस पैसे को यूज करें, कॉल हमें अभी करें। अभी भी स्टाफ रेडी है एंड हमारा ऑफिस 7 दिन खुला रहता
3: है। वेरी गुड। एंड सराश, इस लोन दे विच कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी भी हैगी है?
5: नहीं जी, यही इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। लाइक केस में कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, हमारे पास अमीर से अमीर बंदा भी आता है, सिंपल से सिंपल बंदा भी आता है। तो लाइक इसमें कुछ भी गारंटी कोलैटरल नहीं है। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, फंडिंग हासिल करें।
3: एंड सराश, एदा अप्रूवल रेट कितना का ते नाल की कोर्सेज सौखे ने, पासिंग रेट की आ?
5: हां जी, कोई भी हवाबाजी नहीं है इसके अंदर। कोई भी, मैं इन्फ्लेट नहीं कर रहा इस चीज को। मैं अप्रूवल रेट इसमें 95% है, वैसे 99% है। 95% मैं कह के चलूंगा, तभी हम अपनी फीस बाद में लेते हैं। हमें पता आपका काम हो जाएगा। गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, आपके खाते में आता है, बैंक नहीं दे रहा, कोई कागज नहीं लगते नकली असली इसके अंदर। सिर्फ आपको NOA, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बच्चों के मैरिज सर्टिफिकेट, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सिंपल काम है, साफ काम है। 8 साल से सारों को सर्च कर चुके हैं, कोई भी चलाकी नहीं है।
3: वेरी गुड। एंड सराश, ये भी बताओ कि ये लोन की रेंज कितनी है ते आपा लोन ये कितने भी यूज कर सकते हैं?
5: बिल्कुल जी, कहीं भी यूज करें। 50,000 से 1,70,000 तक रेंज है। फैमिली साइज ज्यादा है, आपको ज्यादा फायदा है। आपका अगर आपका फैमिली साइज बच्चे ज्यादा है, किड्स ज्यादा है, आसान से कोर्स है, ऑनलाइन है, कोई एज लिमिट नहीं है। PR, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप है, फंडिंग को हासिल करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए।
3: सराश, ये जो लोन है इसका 0% इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट 2.5 years के लिए। इस लोन के साथ किसी और लोन को भी हम पे ऑफ कर सकते हैं?
5: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग हमें बताते हैं कि उन्होंने इस लोन से, जो कि 0% पे है, विदाउट कोलैटरल, विदाउट टेंशन, ये जो लोन एग्जिस्ट करता है धरती पे, इससे लोगों ने अपने गाड़ी का लोन पे करा। क्यों? ये 0% है। गाड़ी का लोन कितने पे होगा? 7 या 8% पे, ठीक है। और बाकी लोग और भी बताते हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन। अभी एक फैमिली आई थी, वो कह रहे थे उनका पिज्जा स्टोर है, कहते उनके क्रेडिट कार्ड पे 22% का लग रहा है ब्याज, है ना। तो उन्होंने इस पैसे से उसको पे करा। तो लोग बड़े थैंकफुल हैं, आके बड़ी दुआ देते हैं। और बाकी इसमें कोई भी चलाकी मीठी बातें नहीं है। कोई भी फंडिंग के वर्ड से हम डरते हैं, डरना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी चलाकी मीठी बातें, कागज नहीं सेट हो रहे। कॉल करें, हमारी फीस कितनी काम होने के बाद 199 है।
3: सो तुसी फीस भी बाद दे विच लेने हो? 1.5 to 3 months लग जाते हैं फंडिंग डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट च आने के लिए। लोग दे देंगे कम होने तो बाद फीस?
5: अब मैंने आज ही, हमने एक नई इम्प्लॉई हायर करा है, उनका काम ही यही है पैसे लेने का। क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं नए बंदों का काम करने में, हम अपनी फीस भूल जाते हैं, लोगों का काम कर देते हैं, फीस लेना भूल जाते हैं आखिरी में 1.5-2 महीने बाद। अब स्पेशली हायर करा है आज उन्होंने, हम लाइक 20 बंदों से जो उनकी फंडिंग कब की गिर चुकी है महीने पहले की, उनको हमने घंटी घुमाई, सर पैसे दे दो, राइट है, सबके पैसे आ गए। काम होने के बाद 199 फीस है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं सर, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं 8 साल में। इसमें हम लाइक कोई भी अगर कमीशन या परसेंटेज या कोई सेटिंग होती ना, तो हम महीने के हर रोज शोर ना मचाते रेडियो पे, और हम मतलब 5 क्लाइंट करते और सो जाते। बट ऐसा कुछ नहीं है, साफ तरीके से कर रहे हैं। नंबर नोट करें, 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75। कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-31-75।
3: सराश, जे कोई साडे लिसनर्स ने उन्हां दा क्रेडिट स्कोर वीक है, उन्होंने मिल जू लोन,
5: उनका उल्टा जल्दी अप्रूवल आता है, कोई गवर्नमेंट दे दी है, बैंक नहीं दे रहा है, यहाँ पे जीरो भी है ना स्कोर, आ जाइए, कल कनाडा में लैंड कर रहे हैं, लेकिन पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउसवाइफ, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, जो भी आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अमीर गरीब में, ये क्रेडिट इन सब चक्करों में, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट बस आपके छोटे से डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, दैट्स इट, वो असली होंगे ना, पीआर कार्ड में क्या रेफरी होगी, ना कोई एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट लगता है इसके अंदर, 50,000 से $1,70,000 हासिल करें, एग्जाम्स नहीं है, आसान कोर्सेज है, ऑनलाइन है, फुली ऑनलाइन, 20 घंटे कभी भी लॉग इन करें, हमारी फीस 199 काम होने के बाद आपकी ईमानदारी से, नंबर 437-264-3175 437-264-3175
3: नंबर एक बार फिर,
5: नंबर है जी 437-264-3175 कॉल करें, 437-264-3175 हुणे कॉल करो,
3: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया,
5: थैंक यू जी।
3: SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੌਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984। एंड एक थोनू मैसेज असी देना, याद रखो जरूर मनप्रीत ढींसा, मनप्रीत ने साढ़े हजारा ही लिसनर्स दी इंश्योरेंस घटा के दिती है, गड्डियां घरां दी इंश्योरेंस दा वधिया रेट 416-518-18 416-500-1818 ते कॉल तुसी जरूर जरूर जरूर करो। सो दोक बोल फिर वापस आपा उन्हें अमरिंदर गिल है, अमरिंदर भाई ने कमाल करती है।

0: the locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डिया नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 905-621-4100 ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

0: टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीतां दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 ते 416-917-7763

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600। हेलो ब्रो, किथे है तू?
1: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
0: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है ते खाना भी बहुत बढ़िया।
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुने कॉल करो 9054512600, 9054512600।
2: ड्राइव कर रहे हो? शो नो एंजॉय कर रहे हो? कुछ भूल रहे हो?
3: ड्राइविंग लाइसेंस?
2: नो।
3: पुलिस ऑफिसर?
2: नो नो।
3: ट्रैफिक लाइसेंस?
2: नो।
3: देन
4: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-1900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
4: की तुसी कनाडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते
6: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नु ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
7: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया, गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
4: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699
8: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती है। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।
9: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल होया पिया, किन्नियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
10: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता होई नहीं।
11: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
12: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता?
13: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

रखरी वफा है तू, चाह है तुझे चाह से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू।

0: हो, कैसे कैसे गीत लगा रहे हो सुबह सुबह आज भाई जान, क्या हुआ है आपको? प्यार क्या है, प्यार कभी पूरा हुआ है? पूरा हो भी कैसे जिसका मेरी जान पहला अक्षर ही अधूरा है। पंजाबी विरसा। हेलो,
1: फोटो मार रहे हो सारा सौ सारी काल
0: आओ
1: हाथ चाहिए सारे
0: जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे सर, की हाल चाल, ठीक हो?
1: पर भी आ जाने का चीजा का गाने के बच्चे का गा रही है गए गए तो भी सारी चीजा देखनी होनी है सारी
0: की देखी होनी है?
1: चीजा भी देखी होनी होने बीच घर आई मगरों से वेलो लै पहला जाती है कि वेलो गाने किन्ने टॉप दे
0: मैं नहीं देखे, मैं चंबा नहीं देखे भाजी, आई एम सॉरी। मैं चंबा नहीं देखे, मैं तुम दोबारा दस्या, मैं मैक्सीको जाया, मैं क्यूबा घूमया, मैं इंडिया घूमया, हूं पाकिस्तान जाना। कोई दसो ये तुम कोई नाल मेरे जाना तो चलो,
1: मैनू तू कितने लेके जाना
0: नहीं नाल लैके जाऊं तुम, मैं नाल दी सीट ते बिठा के लैके जाऊं, गले कोई नहीं। प्रोग्राम पंजाबी विरसा। लो जी, कैसे यार गीत अज है हरजीत जी, अज पूरी फॉर्म ही लगे, तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महका जाए। हैं कैसे कैसियां बातें, कैसे कैसे शेर है। तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महका जाए, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तू साथ हो तो जैसे जहां सज जाए। पंजाबी विरसा, द वन एंड ओनली माई डियर सिंह हरजीत शो।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लाके आ रहे हो, ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लाके उन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़े अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535, विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।
0: वाह भाई वाह, बल्ले विधि छाबड़ा
5: ए टू जी किचन कैबिनेट, भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं। लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते, ए टू जी किचन कैबिनेट, 416-720-7073, 905-720-7073 ते कॉल कर सकते हो।
0: प्रोग्राम पंजाबी विरसा, सिंह हरजीत शोधना तुसीं जुड़े हुए हैं, आ चको एक कॉल हो लली। हेलो, सत श्रीकाल जी, वीरा जी की हाल है? कोई गल नहीं, कवाली ला देने सर, आप चंगी लगी मेरा दिल जया करता कवाली का, शो करावा यार, मतलब तुसी पता नहीं आना नहीं आना, मेनु पता नहीं।
6: ऑटवा तो कॉल कर रहे जी।
0: हां जी,
6: ऑटवा तो कॉल कर रहे जी।
0: कितो कर रहे कॉल?
6: ऑटवा तो जी।
0: अच्छा, ऑटवा तो फिर मुश्किल हो जा, बंदे क्वालियां ने उथे ले आवा, फिर उथे एक करा देने प्रोग्राम ऑटवा ਤੁਹਾਡੇ ਉਥੇ, ਹੈ ਨਾ?
6: ਆਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ,
0: ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਟਵਾ ਜੇ ਲੈ ਆਈਏ ਬੰਦੇ ਤੇ?
6: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ।
0: ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਟਵਾ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ?
6: ਅਜੇ ਜੀ।
0: ਅਜੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਵਾ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਟਵਾ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਜ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। बहुत ज्यादा वधिया सोना, नवे नवे नवे नवे डिजाइन, जिवे नवी नवी दुल्हन आंदी ना घर, नवा नवा सोना पाया, ऐदां दे नवे नवे डिजाइन पहुंचे दुबई दे। जे तुसी वधिया ज्वेलरी लैनी है ते मास्टर ज्वेलर तों वधिया तुहानूं होर कौन वेचू भाई? लोकेशन देखो, दो लोकेशन सोने नाल लदियां हुई है, जिवें ना ग्रोसरी स्टोर दे गोभी दे फुल दे उत्ते फुल चाढ़िया हुंदा है,

0: होगा गंडा सिंह रिपोर्टिंग सर।
1: सत श्री अकाल जी।
2: की हो गया गंडा सिंह जी?
1: कुछ नहीं होना, की है
2: इतने औखे सौखे क्यों बोली जाने हैं?
1: एक मिनट मैं लात थोड़ी
2: की होया, तुसी आराम नाल बैठो, इत्थे गल की होई है मेनू दसो तां सही।
1: जिहदे नाल मर्जी बिठा लो, हुण ते वैसे भी राती मैं गवांडियां दे गमले लागे बैठा रहा।
2: वैसे मेनू थोड़ी बहुत हिंट तां मिलदी पई आ, मैं चाहुंदी नहीं।
1: पता जिहड़ा उधर मैं कौन रखिया तू?
2: ओहो, ए मेरे करके होया?
1: बस तू इधर मैं कौन रखिया?
2: हां,
1: जांदियां नूं ओह ऑन हो गई।
2: ओहो,
1: उदों ऑफ होई जदों मैं आख्या हुण ते पक्का ही ऑफ हो चलिया।
2: अच्छा नहीं नहीं सॉरी, मेनू हंसना नहीं चाहिए, कोई गल नहीं, मैं हैगी है ना, तुसी टेंशन नहीं लेनी।
1: पापा की कहंदे आ, चिड़ियां दा मरना ते गवारां दा हासा।
2: ए की मतलब आ?
1: मतलब हुण मैं चिड़ी ते बन नहीं ना सकदा। इस करके चिड़िया का मरना ते गवारां दा हासा, गवारां नूं तूं हसी नहीं, तेरा करके लत्तां तड़ालियां में।
2: देखो जी, मेरे करके तड़ाईयां ना तो दवाई भी थोनू मैं दवा दूंगी।
1: नहीं आहो जी गल्लां ना कर, पता लगे कि उन्हें एक तोड़ी दूजी भी तोड़ दे।
2: नहीं नहीं तुसी ऐ करो,
1: जिहड़ा बंदे ने जरूरी काम जाना हुंदा उत्थों मैं बैठा रहा।
2: ओए होए, ए तां काम औखा, पर चल फिलहाल तुसी चाह ना सार लो।
1: चाह नाल नहीं सार रहा, क्योंकि रोटी भी रात दी खवाई उन्हें।
2: आए मैं रोटी भी खवा दिंदी हां, चलो उस तों बाद फिर दवाई दा भी प्रबंध कर लैंदे
1: हां। इन्ना कुछ तू कर ही लेना, हुण माइक बंद कर लै, जो इत्थे आ गई ते फिर गंडा सिंह नाल लाउंदे फिर।
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना हो भी।
4: बस इनी गल।

0: हर महीने मैकेनिक नू पैसे दे देंदे हो। ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नू गोद ले ले।
1: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
0: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्कु ट्रक सेल्स ते।
2: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक को बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
0: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
2: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चल दे हां निस्कु ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसिसागा। कॉल 6745189999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
3: अपने कोले वीकेंड ते कुछ घंटे एयर टाइम अवेलेबल है, तुसी अपना रेडियो प्रोग्राम कर सकते हो। नंबर ने 416-677-0609। ऊपर वाले दा दुआ करम रहा, फिर मिलांगे। डेव टाला नु इजाजत दियो। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड।
4: 32-55-80।
5: हेलो
6: हेलो, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
5: हां जी, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
6: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
5: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो, बस दसो कि टिकटा कदों दी चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
6: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200, 9056781200, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: ताजियां सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां एयरपोर्ट रोड एंड मेफील रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील रोड यूनिट।
3: मित्रां दे जंक्शन ते
4: ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ?
5: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
3: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ
5: ਬਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM to 6 PM ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% ਆਫ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 646-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
6: आज खुश तो बात होगी
7: ओ ता होना ही है जो तो तीनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तई नकदा बनदा ही है।
6: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
7: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
8: ਚਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
7: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
9: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
7: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौड़ी खुमान लेके आए हैं साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाजमा। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाजमा, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
3: मित्रां दे जंक्शन ते
4: केड़े जंक्शन ते?
3: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
5: रात लगिया महफलां रे
3: भाई, महफलां ते रोज ही लगदियां ने। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM, ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन
6: जी, बिल्कुल टिक्का जंक्शन दे सहयोग नाल भी प्रोग्राम नूं पेश कीता। ढिल्लों वीडियो दा भी सहयोग है ते तुहाडा सारयां दा सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने कॉल कीतियां, जिन्हां ने प्रोग्राम नूं सुनिया ते सारे स्पॉन्सरां दा। ते पूरी अरदास दुआ करदे आ कि वीकेंड भी तुहाडा सारयां दा वधिया रहे। परमात्मा ने चाहिया ते सोमवार फिर मुलाकात होवेगी। कोई भी बिजनेस नूं अपने नूं प्रमोट करना चाहुंदे हो ते फिर साडे नाल गल्लबात कर लैणी है। साडा नंबर है 905-799-0999। ਕਿਰਨ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ।
7: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰਸੈਲਫ ਗਾਈਜ਼।

0: ਸਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन एलिजिबल है, कोई एज लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है। इस देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती एज पे, किसी और चीज पे, चाहे आप पेंशन पे हैं, चाहे आप लाइक हाउसवाइफ है, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड है, कॉल करें, ऑफिस आए, असेसमेंट कराए, उन पर भी असेसमेंट हम कर ही देते हैं। अब हमें अभी कॉल करें 437-264-3175।
0: जी सनाश जी, जी फंडिंग सू मिलती है, इन कितने कितने स्पेंड कर सकते हैं, सब तो ज्यादा फायदा किनू हों?
1: अभी मेरे सामने जो क्लाइंट बैठे थे उनकी फंडिंग आई आ चुकी है आज, तो वो मिठाई का डब्बा लेके आए थे, तो उन्होंने मेरे को ये बोला उनके क्रेडिट कार्ड पे 22% पे ब्याज चलता है, इंटरेस्ट है, तो वो उन्होंने इस लोन से वो लोन पे कर दिया क्योंकि ये लोन तो 0% पे है। कहीं भी यूज करे, ग्रोसरी करे, बैक होम भेजे, इन्वेस्ट करे, खर्चे चलाए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे आप इस पैसे को यूज कर सकते, कोई भी इसमें चाबी कुंडी नहीं है।
0: जी ते इदी जिहड़ी रीपेमेंट है ओ कदों शुरू हुंदी है, ते इहदे ते इंटरेस्ट वधदा या इन्ना ही रहिंदा, इहदे बारे दस्सो।
1: हाँ जी, अब जैसे मेरे घर की मोर्टगेज $2500 है, तो उसमें शुरू के सालों में तो मतलब ज्यादातर ब्याज ही जाता है, 10-15 साल 2000 ब्याज जाता है ऐसे करके ना शुरू में, आखिरी में प्रिंसिपल जाना शुरू होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 साल का कोर्स है, आपको फैमिली ऑफ 4 को $1.5 लाख तक आ जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों आसान से कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन है, 20 घंटे आपने फोन पे लैपटॉप पे ऑनलाइन रहना है, ना टीचर है, ना असाइनमेंट है, ना एग्जाम्स है, बताइए। ओके, 1.5 लाख आ गया, 2.5 साल बाद पेमेंट स्टार्ट है, शुरू में ब्याज है नहीं, 2.5 साल जीरो, और 2.5 साल बाद ब्याज साल का 2.5% है, मतलब $1 लाख पे महीने का ब्याज सिर्फ $200। ऐसा कोलैटरल फ्री लोन, गारंटी फ्री लोन 0% पे कहां मिलेगा?
0: बिल्कुल, इधर लिए कोई क्रेडिट चेक होता है सरांश जी?
1: ना जी, नो क्रेडिट चेक, नो गारंटी, नो कोलैटरल, बैंक नहीं दे रहा, गवर्नमेंट दे रही है, कोई भी इसमें एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट लगता भी नहीं है, तो इसलिए कोई क्रेडिट चेक ऐसा कोई चीज है ही नहीं।
0: जी सरांश जी, एक चीज दसो कि जेहड़े कोर्सेज ने केड़े केड़े ऑफर होणगे, क्लासेस सारयां दियां सेम लगदियां ने या डिफरेंट डिफरेंट ने, ते एक चीज ए भी दसो कि तुहाडी इहदे विच फीस किन्नी है?
1: हाँ जी, सो इसमें ऑनलाइन कोर्स ही लाइक करते हमारे क्लाइंट्स, अकाउंटिंग का कोर्स है, बिजनेस का कोर्स है, फुली ऑनलाइन, कोविड के बाद से मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन कोर्सेज अलाउ कर रखे हैं, बड़े ही लोग हासिल कर चुके हैं 8 साल में, आप पीछे ना रहिए, आपकी फंडिंग आप मिस कर रहे हैं, स्किल भी मिस कर रहे हैं, ऑनलाइन है, एग्जाम्स नहीं है, असाइनमेंट्स भी नहीं है, 20 घंटे आपने ऑनलाइन रहना, सेल्फ स्टडी मॉडल पे कोर्सेज है, फंडिंग 50,000 से $1,70,000 तक मिस ना करें। हमारी फीस कितनी? काम होने के बाद बाद में फीस है, क्योंकि हमने एंड टू एंड सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है। कितनी फीस है? 199 फीस है। मुझे अभी तक 8 इंटरक आ चुके $200 के, लोग $1 हमें ज्यादा ही दे देते हैं, अभी तक आ चुके हैं, तो इसलिए आप मिस ना करें, कोई भी चलाकी मीठी बातें नहीं है, 8 साल में हजारों को सर्च कर चुके हैं, ऑफिस एड्रेस 218 एक्सपर्ट बोलने बट हर एंडारी डेरी पे, नंबर 437-264-3175 437-264-3175 एस्टिमेट लो, कॉल करो 437-264-3175 437-264-3175।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सरांश जी, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक तो सरांश नागपाल जी सारे लाइन से जुड़े हुए सी, तुसी जरूर इन्हां दे नाल गलबात करो, ते तुसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स दे विच जरूर एनरोल हो सकते हो।
2: जी और मैं जानकारी दिया तुहानू कोमल ट्रैवल दी, इंडिया तुहानू जम भेजांगे आपां, मौसम भी हैगा जाना भी चाहिदा, हर साल जाया करो, एक दो महीना लगाया आया करो, बजुर्ग तुहाडे वध भी लगा सकदे आ क्योंकि उन्हां नूं पेंशन वगैरह इत्थे मिलदी रहिंदी आ, 4 भी लाया 5 लाया वधिया, इत्थे फिर बाद च जदों तों गर्मी आ जांदी वापस आ जाओ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਟਿਕਟ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ $1,490। ਨਾਲ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,150, ਦੋ ਬੈਗ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ $1,550 ਟਿਕਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਵੇ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਪੀਸ ਦੋ ਅਟੈਚੀ ਕਹਿ ਲਓ, $1,380 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ 1 ਵੇ $1,150 ਦੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ $4,950, ਆਲ ਬੋਟ $5,000 ਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905-249-7711 9052397711 ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ ਤੜਕਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆਵਾਂਗਾ
0: ਜੀ